परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर आप जी हफ्तावारी दीवान अंदर हाजरी भर रहे हो। आप जी नूं गुरमुखां ने बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र बचन कीर्तन विच सरवण कराए ने, सेवा करे सो चाकर होए जां हजूर दा वचन असी सरवण कीता, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए।

बादशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो। अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो श्रवण किया है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो। करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरानी कीर्तन दी समाप्ति ते जो अमृत बचना दा कीर्तन सरवण कराया है, धन गुरु अमरदास महाराज हजूर दे मुख तो उचारण कीती हुई अमृत बाणी राम कली राग अंदर आनंद साहिब दी एक पौड़ी का कीर्तन आपने श्रवण किया है। ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले श्रवण भी करते हो, पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे। पहला बचन ते किता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए। शब्द वरते है सच्ची बाणी नू, ते नाल कृपा कीती भी जदो कोई सच्ची बाणी नू गाएगा अपनी रचना दे नाल इस तो तुल इस तो उच्ची होर कोई बाणी नहीं, ते जदो भावना नाल इस गुरबाणी नू कोई गांदा है ते गुरबाणी सुन नाल गाउण नाल ओदे किरदे नू अमृत दी दात मिलदी। शब्द आपने सरवण कीता आवहो सिख सत गुरु के प्यारो के आओ प्यारे गुरु के सिखो इकट्ठे होइए, ते नाल फिर कहन लगे गावो सच्ची बाणी इकट्ठे हो के उस करते दी उस निरंकार दी इलाही बाणी नू गाओ सच्ची बाणी नू गाओ। ते शब्द वरत्या बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। हुण जदों इत्थे शब्द आ गया कि बाणिया सिर बाणी, बाणिया बहुवचन सारिया बाणिया विचों सिर दा अर्थ श्रेष्ठ श्रोमणी, कहन लगे सारिया बाणिया विचों श्रोमणी जो श्रेष्ठ है वह गुरु की बाणी। बाणी का आखरी अर्थ वैसे हुंदा है आवाज। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने कहा भी एक बाणी हुंदी है सच्ची ते दूसरी बाणी ने शब्द वरते है कच्ची। ते गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब की बाणी विच ये दोनों पौड़ियां इकट्ठियां रखियां, एक पासे सच्ची बाणी ते दूजे पासे कच्ची बाणी। सच्ची बाणी जदों कोई सुनदा है ओदे हिरदे नूं अमृत का रस मिलदा है, ते जदों कोई कच्ची बाणी सुनदा है ते सच जाणो ओदा अंदर भी कच्चा हो जांदा है, ते कच्चे बोल सुनदे नाल ओदे अंदर नूं वी कदी

ग्रंथ मंजी पर राजे, गुरु ग्रंथ साहिब मंजे ते ने, बाकी सारी संगत ते गुरु अर्जुन देव जमीन ते। देखो समा आया, हजूर ने देखा भी गुरु ग्रंथ साहिब तैयार नहीं, ते गुरु का ग्रंथी, ग्रंथ का सेवादार ग्रंथी, मैं कर्ज करांगा गुरु के ग्रंथी सिंघां नूं वी, आवाज दूर दूर तक जारी होनी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे सेवादार बनो ना के प्रबंधकां दे। खिमा करियो, वो तुहानूं खुद कहिंदे ने कि साडे नेड़े ना छड्यो। आपां सोचिए भी इन्हां दी खुशामद करके गुरु नूं रिझा लांगे, सवाल भी नहीं पैदा हुंदा, पर यह भी नहीं इन्हें अंकारी हो जाइए जने कने दी बेइज्जती करी जाए। दोनों पक्ष रखियो, कभी देखो ग्रंथी की तस्वीर देखनी है, भाई संत सिंह नूं देखो, शेरे पंजाब रामबाग आए ने, अदब भी चाहिए, यह नहीं कि हंकार विच आके हर एक नूं इको रसे नाल बनी जाइए। रामबाग आए ने ते आके सुनिया कल्या भाई संत सिंह नूं कहो सानूं मिल, ग्रंथी साहब सन हरिमंदर साहब विच नाम ही लिखे है मार्फत ज्ञानी संत सिंह सेवा कराई, एक कवाड़ उत्ते लिखे है। ते ज्ञानी जी उस वेले कथा करन जांदे पए सन हरिमंदर साहब दे अंदर, ते जदों गए ते जांदिआं परिक्रमा च मिल गया सज्जन, कहन लगा ज्ञानी जी महाराजा साहब ने तुहानू सद्दिआ। ज्ञानी संत सिंह दे शब्द सन, कहन लगे एक गल सुनिआ दीदी कि अज तो बाद कभी भी मैनू उस वेले बुलाए ना जदों मैं अपने साहब की सेवा विच हाजिर हुंदा होवां। चेते रखी वह महाराजा है, यह महाराजन के महाराज है, यह पार ब्रह्म परमेश्वर का घर है। कहिंदा भी जो पिछा मुड़िया उन्हूं आवाज मार के कहिंदे जो मैं कह जाके कहीं जरूर, यह ना सोची भी चुप कर जाए भी की कहेगा, अंदर चले गए अंदर कथा हरिमंदर साहब जो उदो अंदर हुंदी सी, चले गए जी जाके महाराजा रणजीत सिंह पुछदे ने जी किवें, उन्हें पूरी गल तो दस दिती जाके। महाराजा रणजीत सिंह अज दा हुंदा कहिंदा भी करो बर्खास्त जी, हटाओ इस ग्रंथी तो, लाओ इन्हू तखत तो मेरा हुक्म। तो देखो निम्रता, सज्जन चलिया वो रामबाग तो नंगे पैरी शेरे पंजाब, हरिमंदर साहब की परिक्रमा में आउंदिया समा लगा, ते जदों अंदर आया तो भाई साहब कथा करके बाहर निकलते पे सन। शेरे पंजाब ने फतेह बुलाई, कह लगे मत्था टेक के आ, पहला अंदर मत्था टेक के बाहर आए तो अगे अगे भाई संत सिंह, पिछे पिछे भाई रणजीत महाराजा रणजीत सिंह। जदों बाहर निकल गए ना तो भाई संत सिंह कह लगे शेरे पंजाब हुण तू अगे तुर, मैं तेरे पिछे जाना। उन्हें कहा जी क्यों, कहिंदा उस घर का वजीर मैं हाँ, तू भिखारी है, उत्थे वजीर ने अगे तुरना तू पिछे तुरना, हुण तेरे राज की हद आ गई, तू अगे तुर मैं तेरे पिछे चलना। किते चेतो रखो इना कुछ साडा सम तौल हो जाए। हजूर ने देखा भी ग्रंथी किनू बनाना है, किहड़ा ग्रंथी होवे, ते असीं भावें मैं आप ही ग्रंथी की सेवा करना कहण नूं आ, ग्रंथी दे बड़े उच्चे गुण जे। गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथी, सारी रात इतिहास कहिंदा सोचदे रहि किनू बनावां, उन्हें इतों तक देखिया भी बेदियां दी कुल विचों कोई ले वेख लईए, क्योंकि उहदे सारे मिल गए सन, कोई भल्लियां विचों वेख लईए, कोई सोढ़ियां विचों देख लईए, कोई टेणां विचों देख लईए, अखीर ते कहन लगे किते अंदर खौमे दा बीज ना पुंगर पवे कि साडे बापूआं दी बाणी, किते ग्रंथ साहिब नूं छड के अपनी पैर पुजाण। सारी रात सोच के अखीर ते इंद्री जित शब्द वरत्या, इंद्री जित जिन्हें इंद्रिया नूं जित्या बाबा बुढ़ा साहब उन्हां दे कोल जा खलोते। बाबा साहब विश्राम तां करदे सन जमीन ते पै, गुरमुखो गुरमुख दा सौना साडे वर्गा सौना नहीं। हजूर कहिंदे ने कि उह सौंदे ने तां वी गुरु चलदा, सौंदे वाह वाह उचरै उठते पी वाह करेन। उत्थे कहिंदे ने बाबा बुढ़ा साहब दा दुध वर्गा चिट्टा दाड़ा, सुत्तिआं चमके मत्थे ते नूर, चरणा वल खलो के कहिंदे ने गुरु अर्जन देव ने शीश झुका दिता सी। कहन लगे चार गुरुआं दी सेवा कीती आ, तेरे तो वड्डा सेवादार कोई नहीं, जिन्हें कदी मैं नहीं जिताई। शुक्र कीता वाहिगुरु के गुरु ग्रंथ साहिब दा सेवादार ग्रंथी साहिब ही मिल गए। उत्थे इतिहासकार ने दो पंक्तियां कहियां ने, वेख के शब्द वरते, कह लगे निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी बैठे। कहन लगे निज मन ए विचारत भय, श्री गुरु ग्रंथ सेवक कह के, गुरु ग्रंथ साहिब दा सेवादार किनू बनाइए।

सतगुरु तेनू छड के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी ता सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे उत्थे इक शब्द क्या कह लगे ए बाबे के होणगे बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सुवाना जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना लोग उन्हां दी पूजा करनगे अज गुरु नानक साहब जी तो जदो जोत भाई लैणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया है बाबा बुढ़ा जी पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया है गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने फिर साहब ने कहा बुढ़िया मेनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणां विच कर बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा कहन लगे भाई लैणे नूं गुरु अंगद साहब नूं तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं तुसी खडूर चले जाओ बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर आए इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आ के टिके इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां दा हाकम सी जेड़ा चौधरी सी उहदा नां सी तख्त मल इहदी धी सी माता विराई दा असली नाम सी वीराबाई इहदे सत भरा सन ते लोकी आम तौर ते इहनूं सत भराई भी कहिंदे हुंदे सन इस माता विराई दा आनंद कारज खडूर दे जिमीदार नाल होया चौधरी नाल होया माता पिराई ने गुरु अंगद साहब दे पिता बाबा फेरू मल नूं सक्का भरा बनाया सी ते गुरु अंगद साहब माता विराई दे घर आ के ना पहला गुरु नानक साहब दे दर्शन भी कीते सन अज जदों गुरगद्दी जोत मिली माता विराई दे घर आए जिहड़ी रिश्तेदारी करके भैण भी बन गई वैसे भुआ लगदी सी पर वीर शब्द इन्हें गुरु अंगद साहब लई भी वरत्या पर जिदन गुरु जोत मिल गई उदन वीर नहीं उदन गुरु नानक जाने अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए प्रेम दा विछोड़े दा सल सी बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता अगों दरवाजा चिण दिता ते इतिहासकार कहिंदे ने संगत बेबल हो गई जेड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिसे नहीं एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है पर गुरु अंगद साहब हैन किथे माता विराई नूं कहा तू दसना नहीं किसे नूं गुप्त वास हो गए सिख संगतां थां थां ते गईयां भाई अजिता रंधावा इहदे मन विच भी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होवे जदों संगत नूं गुरु ना लभिया उस वक्त एक ने क्या कहन लगे भलियो भटको ना चले जाओ बाबे बुढ़े दे कोल रमदास ओनू गुरु नानक इक बचन दे के गया बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा केवल बाबे बुढ़े नू पता है गुरु नानक दी जोत किथे टिकी हुई शब्द बड़ी प्यारी पंक्ति सी तेरे तो ओले कदे ना होसा संगत पहुंची रमदास बाबा बुढ़ा जी खेतां विच काम पै करदे ने जाके कहन लगे महापुरशा विछड़िया नू मिलाण वालिया अज संगत तेरे घर विच आई है संगत दियां अखां विच नीर सी पुछया दसो साध संगत इस किरमले की हुक्म है कहन लगे बाबा तैनू गुरु नानक साहब एक बख्शिश दे के गए ने तेरे तो ओले कदे ना होसा
एक कृपा कर इस बिछड़ी हुई संगत नू गुरु तक मिला दे, इस संगत नू गुरु तक ले जा। बाबे बुढ़े ने रबाबी नाल ले ले, संगत नाल ले ली। बाबा बुढ़ा रमदास तो तुरे है, संगत दा इकट्ठ नाले सीधा खडूर आके पहुंचया, ते पहुंचया भी माता विराई दे घरे जिथे गुरु अंगद साहब टिके हुए। आके कहन लगे, मां नमस्कार कीती माता विराई ने, देखिया बाबा बुढ़ा आ गया, बड़ा अदब कीता। कहन लगे, माई तेरे घर गुरु टिके है। माता विराई दे शब्द संग भाई वीर सिंह लिखते ने, कहन लगी तुहानू किन्ने दस्या मेरे घर गुरु वे। ते बाबा बुढ़ा मुस्कुरा के कहन लगे, माई तेरे चेहरे का नूर दसदा पै के तेरे घर विच गुरु है, तेरे चेहरे की रौनक दसदी है तेरे घर गुरु है, क्योंकि जितना मर्जी तू लका लै, क्योंकि नाम का रंग बोल के कहिंदा तेरे घर दीन दुनिया का खजाना। कहन लगी, बाबा तू सब कुछ समझना पर मैनू अपने गुरु के हुक्म विच पाबंद रहन दे, मैनू हुक्म नहीं मैं जबान खोलां। बाबे बुढ़े ने पहली जुग दसी, कहन लगे सिखो गुरु प्रगट करना जे। कहन लगे, हां ते रबाबिया नू क्या रबाब छेड़ो ते बाणी पढ़ो गुरु नानक दी, कदी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा के गुरु नानक दी बाणी सुन के गुरु अंगद पातशाह बाहर ना आवे। बाणी दा अदब कितना, गुरु दी बाणी सुन के गुरु अंगद जरूर बाहर आवेगा। जदों रबाबिया ने शब्द छेड़िया, मैं मन जारन राम की तेरा नाम मखर व्यापार जियो, जदों प्रेम नाल भिजे शब्द निकले ते उस वक्त किन्ने ने किवाड़ खुलिया, गुरु अंगद साहब बाहर आ गए। ते बाबे बुढ़े ने उच्ची आवाज किया, संगते गुरु नू जदों भी प्रगट करने बाणी दा आसरा लई, क्योंकि बाणी दे विच गुरु प्रगट हुंदा। रमजा पांदे पैसन के आउन वाले समय विच ए करने, जदों गुरु अंगद साहब बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार पहली कीती, कहन लगा, बाबा सतगुरु इस संगत विछड़ी नू अपने नाल जोड़, क्यों तुसी अंदर ते गयो, इस संगत नू कौन सांभेगा। कमाल दी गल, मेरे गुरु अंगद साहब दे नेत्रां विच नीर सी ते मुख विचों जिहड़ा पहला शलोक निकलिया ते गुरु ग्रंथ साहब दी श्री राग की वार विच गुरु अंगद साहब दा पहला शलोक है। पुछया, सतगुरु अंदर क्यों टिके हैं, ते नेत्रां विच नीर भर के क्या, बुढ़िया जिस प्यारे सिउने हो तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताके पछे जीवना, पर क्या सतगुरु इनू तेरे तो बिना आसरा नहीं संगत नू। बाबे बुढ़े ने विछड़ी हुई संगत नू गुरु नाल मिला दिता, ते फिर हाथ जोड़ के क्या, सतगुरु अपने इस बच्चे नू कोई हुक्म दियो, मेरे प्रति की हुक्म है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब ने शब्द कहे सन, कहन लगे, बाबा तिनको क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक देव, किन्नी कु किरपा होगी होवेगी। गुरु अंगद साहब ने कहा, की उपदेश करा तेनू जिनू गुरु नानक किरपा देगी। गुरु अंगद साहब दा समा लंघिया ते बाबा बुढ़ा खडूर टेक गया, बाबे बुढ़े नू सेवा दिती गई गुरु की लंगर विच माता खीरी दे नाल। बाबे बुढ़े ने रज के भांडे मांजे, रज के तप्पड़ झाड़े, गुरु अंगद साहब दे चरण परशे। अज जिदन बाबा अमरदास आ गए ने ते गुरगद्दी गुरु अंगद साहब तो गुरु अमरदास को जानी है, ते अज फिर आवाज दिती कि बाबा बुढ़ा जिवें लैण गुरु नानक तो जोत लैणे विच आई, ते अज गुरु अंगद तो जोत गुरु अमरदास अंदर जानी है, पर गुलियाई दी तिलक जेड़े ने बाबा बुढ़िया तू ही लाना। किन्ना समर्थ होवेगा सिख। सतगुरु ने बुलाया, बाबे बुढ़े ने अपने हाथ नाल गुरु अमरदास जी नू तिलक लाया, ते उस वक्त गुरु अंगद साहब ने कहा, अमरदास ए भारी सिखी इनू अपने कोल रखी। गुरु अंगद साहब जी जदों शरीरक चोला त्याग गए, गुरु अमरदास गोइंदवाल आ गए, ते बाबा बुढ़ा खडूर तो गुरु जोत नाल गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल जिदन उच्ची जात वालिया ने पानी ना भरन दिता, सिखां दे घड़े भन दिते, मशकां नू तीर मार के पाड़िया, ते उस वक्त सवाल उठिया पानी कित्थों लैणा, ते बापू गुरु अमरदास ने कहा बौली विचों, ते साध संगत सवाल उठिया बौली दा टक कौन लाएगा। बाबा बुढ़ा भांडे पिया मांजदा सी, ते गुरु अमरदास ने बांह पकड़ के कहा, कहन लगे, गुरु नानक दे प्यारिया आ जुगो जुग अटल बोली रहनी है,
ਤੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਕਰੀ ਉਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੁਦ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਰਥੀਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਿਰਥੀਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਇਆ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਲਗਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਹਾਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਿਰਤੀਏ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਿਰਥੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਰਤ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਰਥੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ,
ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਏ? ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਲੈ ਸਰਲ ਸਮਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਦੇਖ ਉਹ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭਾਜੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਆਚਾਰ ਲਿਆ, ਮੱਖਣ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੜ ਪੈ ਵਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣਾ ਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ 30-20 ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਏ, ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਖ ਲਿਖਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮੰਨ ਜਾਏ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮੰਨ ਜਾਏ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ
ਐਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਕਾਲਪ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਤੈਰਾਕੀ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਕਾਲਪ ਰਿਖਦਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ 64 ਵਿਦਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, 64 ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਏ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰ ਖਲੋਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਲਮ ਦਵਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਢੋਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਢੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਇਕ ਦਰਬਾਰਾ ਔਰ ਨਾ ਸਥਾਨ ਕੋਊ ਮਰਾਰਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰਮਜ ਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੱਤ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੈ ਗਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ,
श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे, गुरु अर्जन साहब आप भी जमीन ते सुते, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उच्ची थां ते रखिया, ते शाम दे वक्त जदो सारे रात नूं सौ गए ते गुरु अर्जन साहब उठ बैठे ने। कवि संतोख सिंह लिखते ने, सतगुरु सिखां विच टहलदे ने, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की परिक्रमा करते ने, परिक्रमा करके अखां विच नीर भरते ने, ते कोल खलो के कह देंदे ने, दातिया तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग कीतोई, जेड़ा अज स्वरूप तैयार होया मेरे विच गुण नहीं तू योग बना के करा लिया। कहन लगे अद्धी रात नू जदों सिखां विच टहलदे ने सारे सुते ने, मन विच एक विचार आई कि गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ लिखी भाई गुरदास ने, पर सवेरे गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार ओनू थापा जिदे रोम रोम विच गुरु नानक की बाणी वसी हो। किस सिख नू सेवादार बनावा, लिखदा विद्वान इतिहासकार, कह लगे निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी पैठे, निज मन ए बिजारत भय, श्री गुरु ग्रंथ सेवक कह के किन्नू गुरु ग्रंथ साहब का सेवक बनावा। तुरद्या तुरद्या एक एक सिख विचों निकले, ते जिधर सिखां दे चरण साना सुतिया उस पासे बाबा बुढ़ा जी पए हुए, चेहरा लाल सुरख पकदा पिया, केस दुध वर्गे चिट्टा दाड़ है, उपर वाले अखां दियां चिमणियां भी चिट्टियां ने, ते गुरु अर्जन साहब ना बाबे बुढ़े दे कोल खलो गए, कोल खलो के ना चेहरे नूं ताके इको दम शुकर कीता, दाता हरमंदर भी बन गया, गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप भी तैयार हो गया, अज तेरा कोटान कोट शुकर है, ओ सिख भी तेरी कृपा नाल मिल गया जिदे रोम रोम विच गुरु नानक दी बाणी वसी हुई। उथे खलो के बाबे बुढ़े नूं सुत्तियां संबोधन करके क्या, चार गुरु की सेवा करी, बाबे बुढ़िया तू चार गुरां दी सेवा कीती मैं तेरे तो कुर्बान जावा, चार गुरु की सेवा करी, पायो परम निधान बड़े खजाने दा मालक है, सेवक की ए बात है श्री मुख की ओ बखान, कहन लगे सेवक दी वस्तु है ते सेवक नू मिलेगी। अमृत वेले इशनान कीता सिख संगता ने, बाबा बुढ़ा जी इशनान करके ना संगत भी सब तो पिछे जाके बह जाए, सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने स्वरूप तैयार किया, उस वक्त ढोलकियां छैणियां नाल शब्द पड़े गए, जोटियां भी शब्द गाए गए, ते आई आवाज, सिख सोचते ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरु अर्जन साहब शीश ते लैणगे, सिख कहन लगे महाराज स्वरूप लवो, ते देखिया बाबा बुढ़ा किथे वे, बाबा बुढ़ा हाथ विच डंगोरी पकड़ के सब तो पिछे खलोता, सतगुरु ने बांह पकड़ के कहा बाबा अज पिछे नहीं, अज तू अगे लगेगा मैं तेरे पिछे तुरांगा। कमाल दी खेड, किन्ना कुछ सिखा तू गुरु नू रिझा लिया सी, कहन लगा दाता मैं पिछे चंगा लगना, कहन लगे अज तक तू पिछे वे, पर जिस गुरु ग्रंथ दी सेवा तू कर लगा तेरे सीस ते गुरु ग्रंथ साहब होवेगा, तू अगे चलेगा ते तेरा गुरु अर्जन तेरे पिछे तुरे। उस वक्त कहिंदे ने साहिब बुढ़ा आगे कीना, ते पांछे सतगुर सुख लीना, पिछे गुरु अर्जन साहब चौर करी जान। बाबे बुढ़े दे नेत्रां विचों नीर दी चढ़ी लगी, मन भी सोचदा बुढ़िया कर्म तो तेरे नहीं सन, पता नहीं गुरु नानक तेरे ते किन्ना कु त्रुट चुका है। आखदे ने हरमंदर साहब आए, उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने स्वरूप थले रखिया, पिछा हो गए, सोचिया गुरु अर्जन साहब प्रकाश करनगे, गुरु अर्जन साहब ताबिया बहणगे। उस वक्त गुरु अर्जन साहब ने कहा बुढ़ा साहेब हुण असी थले बहांगे तुसी ताबिया बहो। शब्द कह बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, बुढ़ा साहब गुरु ग्रंथ साहब खोल, ले आवाज हुक्मनामा ले सुने सब पंथ। एदा मतलब गुरु के सिखा गुरु दे हुक्म तो उत्ते कोई हुक्म नहीं हूं, किसे बंदे नू पुछन दी बजाय तू गुरु ग्रंथ साहब तो आके पुछी, क्योंकि तेरा गुरु अपने शरीर ते हुंदिया कहिंदा बुढ़िया तू शब्द पर संगत गुरु की आवाज सुनाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ले आवाज सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला, की बोलिया संतां का कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल। शाह राम प्रकाश हो गया,
बाबा बुढ़ा जी ने जपजी साहब का पाठ किया। साध संगत सतगुरु ने कहा इस तो बाद सेवा तुसी। पुछया सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का सामनू कितने आसन करना है? कह लगे कोठा साहब जिथे साडा आसन है। अगला सवाल सी सतगुरु तुहाडा आसन कित्थे? कह लगे अज साडे पलंग ते गुरु ग्रंथ साहब, ते जिथे गुरु ग्रंथ साहब होवेगा मेरे लिए तख्त ना लायो, अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब दे पलंग दे थले मेरी चादर विछा दे। कमाल की गल, बाबा बुढ़ा चादर शाम नू विछांदा है, अज भी अकाल तख्त ते जाओ शाम नू गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप जदों जांदा है एक छाप थले चादर चिट्टी विछी है, वह गुरु अर्जन साहब के नाम ते। एदा मतलब सी सिखा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच जितना मर्जी कोई ब्रह्म ज्ञानी होवे गुरु समर्थ भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच थले बहेगा, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच गद्दी ला के बिल्कुल ना बहे। एदा मतलब सतगुरु ने हर पूरना पाया। गुरु अर्जन साहब शहादत लई तुरे, बाबे बुढ़े नाल सलाह की, बाबे बुढ़े नूं पिछे छड गए। साध संगत मैं थोड़ा जा समा तुहाडा लैणा, एकाग्रता जरूर बख्शिया जी। बाबा बुढ़ा जी दे अंतले दिनां तक मैं अर्ज करना चाहना, गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन साहब दी शहादत हो गई, बाबा बुढ़ा जी आ गए अमृतसर दी धरती ते। जिदन शहादत बारे सुनिया गुरु हरगोबिंद साहब ने एक स्पीच दिती, लैक्चर दिता, बाबा बुढ़ा कोल सी। कहन लगे साध संगत ए मत सोचो असी मुठ्ठी पारा, अज कुछ दिन होए ने तुहाडी ठंडक नूं तपदी होई तवी उत्ते सार दिता है, ए मत समझो असी थोड़े हां, तीली तां एक ही बड़ी है जंगल नूं तबाह करन वास्ते। पानी दे सोमे जदों निकलदे ने निकलदा छोटी दी थां तुम्हें चश्मा, पर जदों दरिया बन जांदा उहदे अगे कोई अटकदा नहीं। याद रखियो भावें तुसी थोड़े हो पर घबरायो ना, गुरु तुहाडे नाल है। उस वक्त 500 नौजवान उठ के सामने आया, कह लगा दातिया दो वक्त का प्रशादा दे दई, 6 महीनिया बाद एक पोशाक दे दई, ते ए शरीर तेरा जिथे चाहे जदों चाहे इस ठीकरे नूं पन लवे। बाबा बुढ़ा जी सब कुछ देखते पए ने। उस वक्त सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरियाई का तिलक भी जिथे दिता है। बाबे ने दो कृपाना पाईया ने, एक मीरी दी ते एक पीरी दी। उस तों बाद अकाल तख्त तैयार होने लगा है, एक पासे दिल्ली का तख्त है। की कारण के गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त बनांदिया कोई कारीगर नहीं लाया। कदी इतिहास नूं पढ़ो, बाबा बुढ़ा जी नूं कोल बुलाया, भाई गुरदास नूं कोल बुलाया, तीसरे गुरु हरगोबिंद साहब ने। अज जे बाबा बुढ़ा बौली का टक लांदा है, जे रामदास गुरु जी दे सरोवर का टक लांदा है, ते अज गुरु रामदास दा पोता गुरु हरगोबिंद साहब जदो अकाल तख्त बनान लगा है, ते सब तो पहली इट भी बाबे बुढ़े ने लाई। अकाल बुंगा भी उन्हें सिरजिया, ते लिखदा विद्वान किसी राज में हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो, ते जेड़ी इट बाबे बुढ़े दी हाथ दी लगी है प्यारे उस दियां जड़ां नूं कोई उखेड़ नहीं दे सकदा। बाबा बुढ़ा जी इत्थे टिके रहे, फिर बीड़ चले गए। गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले दर्शन करन आउंदे रहे। एक घटना मैं पढ़ी कितों नहीं, एक मैनू निर्मले गुरमुख प्यारे साधु ने सुनाई। वह कहिंदा जिदन बाबा बुढ़ा जी की उम्र 102 साल के करीब हो गई ना, उस वक्त ना बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब रहन लग पे, ते ऐसा ऐसा तुर के आना उहदे वचन सन। कहिंदा एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी बाबा जी तुसीं बीड़ साहब तो ना आया करो, शरीर नूं खेचल ना दिओ, मैं तुहाडे दर्शन करन लई खुद पहुंचिया करांगा, तुहाडे कोल पहुंचांगा। उस महापुरश ने मैनूं बचन सुनाए, कहन लगे बेटा बाबा बुढ़ा जी ना मन्ने। कहन लगे दातिया सिख दा काम है गुरु दे दर ते चल के आउणा, मैं गुरु नानक दे दर ते अंतले समय तक आउंदा रहां, तुसीं किरपा करो। साहब ने एक गल की, बाबा जी जे तुसीं आउणा ही चाहुंदे हो ना तुर के ना आया करो, पालकी लै जाओ, तुसी पालकी विच बैठ के आया करो। बाबा जी कहन लगे नहीं, तेरे दर ते मैं तुर के आउणा है। सतगुरु ने पालकी दिती, ओ महापुरश दी शब्दावली सी। बाबा बुढ़ा जी पालकी विच बैठ के आए, सिखां ने पालकी चुकी। जदों रामसर दे किनारे आए ना, ते गुरु हरगोबिंद साहब अगो लैण चले गए, पालकी बांधे। बाबा बुढ़ा जी ने पालकी सिखां ने चुकी, गुरु हरगोबिंद साहब ने इशारा करके कहा
एक नू तू पिछा हो जा, बाबे दी पालकी नू मोढ़ा मेनू ला लैन दे। सतगुरु ने जो मोढ़ा लाया ते पालकी विचों आवाज आई, एक कदम ही अगे ना तुरियो नहीं ते मैं पालकी विचों छाल मारांगा। सतगुरु ने थले पालकी रखी, बाबे चरना ते देख के क्या दाता, ऐसे करके ते मैं पालकी ले जांदा नहीं। सतगुरु ने एक बचन किया, कह लगे बुढ़िया हे बाबा तू पालकी विच है, कपड़े नाल बिलकुल पालकी बांधे, तुहानू किवें पता लग गया मैं तेरी पालकी नू मोढ़ा ला दिता। जेड़ी गल उन्हें कही ओदे अर्थ समझने, कहन लगे सतगुरु मैनू किवें पता लगा, असलियत यही जदों तुसी अकाल तख्त अकाल बुंगे तो तुरे सो मैनू उदों ही पता लग गया सी बुढ़िया तेरा गुरु तेरे वल आउंदा पिया है, क्योंकि जिदन का गुरु नानक के चरणों में जुड़िया वा उदन की सुरत गुरु नानक के चरणों तो बिना कितने गई हुई। जदों गुरु के चरण तुरन ते बाबे नू पता ना लगे, साध संगत बाबा बुढ़ा जी कोई दिन टिके, सतगुरु ग्वालियर के किले विच कैद कर दिते जहांगीर ने। कुछ कहिंदे ने चली आ कतन गए, गल नहीं पूरा योजनाबद्ध तरीका सी ग्वालियर के किले विच कैद करना। जदों संगत बेबल हो गई, बाबा बुढ़ा जी फिर बीड़ साहब तो आए। जदों संगत बेबल हुंदी सी बाबा अगवाई करदा है। अज बाबे बुढ़े की उम्र 115 साल के करीब हो चुकी सी, 15-16 साल के वडेरा शरीर अकाल बुंगे ते आए, संगत बेबल, गुरु साहब अंदर ने, ते बाबा जी ने एक गल कही, साध संगत निराश मत हो, गुरु साढ़े अंग संगे तुसी शब्द पढ़ो, आपां ग्वालियर तक गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल जावांगे। जिहड़ा सी कहिंदे चौंकियां झंडे अरदास विच इहदी कोई रमज है, समझना इस गल नूं। बाबे बुढ़े ने हाथ विच पकड़ी मिसाल, भाई गुरदास नूं नाल लिया, नाल लै लिया, रातों रात पिंडां विच गए, जिथे जिथे संगत सी बाबे दे अदबली लोग बाहर आए, ते बाबे बुढ़े ने एक गल कहनी, घबराओ ना गुरु अंग संगे, चलो आपां ग्वालियर दे किले गुरु दे दीदार करिए। 115 साल का बजुर्ग बापू हाथ विच डंगोरी पकड़ के ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर दे किले दी कीती परिक्रमा, ते जदों दरवाजे वाले पासे बाबा बुढ़ा आया ते किन्ने ने दरवाजे विच नमस्कार कीती, किले दियां कंधां नूं चुमिया, ते हाकम ने पुछया बाबा ए क्यों, कहन लगा मेरा प्रीतम इत्थे बैठा है, किन्ने दिन हो गए ने दर्शन कीतिया, जिस किले विच ओवे मैं उस किले दियां दीवारां नूं चुम के अपने गुरु नूं नमस्कार पिया करना। परिक्रमा करी गए, गुरु हरगोबिंद साहब बाहर आए, बाबा बुढ़ा जी बाहर निकले, बाहर मिले, नमस्कार कीती। जदों सतगुरु अमृतसर पहुंचे ते बाबा बुढ़ा फिर शब्द पढ़ता जोटी विच अगे मिलिया, जिन्हों कहिंदे ने चौंकी कढ़ी। बाबे बुढ़े ने दीपमाला करके चौंकी कढ़ी, ते उदन गुरु हरगोबिंद साहब ने भरी हुई संगत विच कहा सी, बाबा तेरी चौंकी जुगो जुग अटल होवेगी, जदों भी तेरी चौंकी नेक निकलेगी, कोई भावना वाला सिख तेरी चौंकी भी शामिल होवे, रहिंदी दुनिया तक तेरी चौंकी विच मैं खुद शामिल होया करां। अज भी हरिमंदर साहब जाओ, शाम नूं हुंदा कीर्तन, एक चौंकी आउंदी है बाबे बुढ़े दी, बजुर्गां दे हथ विच गुटके हुंदे ने, शब्द पढ़दे ने ज्योति विच, जदों चौंकी दरबार साहब दे सामने आउंदी है, अंदर कीर्तन दी समाप्ति हुंदी है, बाबे बुढ़े दी चौंकी दे अद विच संगत उठ के खड़ी हो जांदी। इसे करके अज तक कहने गुरु तेरिया चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल, कीर्तन की चौंकी भी है। बाबे बुढ़े की कीर्तन जड़ी मैं चौंकी शुरू की अज भी निकलती है। अज ओ समा आ गया जदों संसार तो सब ने चले जाने, एक ओ ने जेड़े उम्र भोग के अफसोस न जाते ने, एक ओ जेड़े उम्र भोग के सुरखरू होके जाते ने। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले ने, ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं एक बचन कर गए ने, सतगुरु इउं लगदा जिवें गुरु नानक जी दी सदपी आउंदी है, आ सिर्फ एक भरम है तन, मैं इस ठीकरे नूं भन के गुरु नानक कोल जाणा, तुसीं कृपा करियो इस बुढ़े नूं सारी जिंदगी नवाजी दात्या, जदों अंतला समा होवे सवास अंतला निकले ते तुसीं मेरे सामने हो। सतगुरु ने बड़े प्यार नाल कहा बाबा जी क्यों नहीं। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले गए। दिन आ गया 16 अक्तूबर ते 1631 दा, बाबे बुढ़े कुल संगत बैठी है ते सवाल कर दिए, बाबा
गुरु नानक की कृपा किवें मिले। ते बाबा बुढ़ा आवाज दे के कहिंदा शब्द पढ़ो, साखी वाले दे बचन ने शब्द पढ़ो, बंदगी करो, खीला करो, उद्यम करो, सब कुछ करो, पर टेक रखो ओदी मेहर दे। शब्द बड़े सुन, ओदी कृपा दी टेक रखो। शाम दे वक्त बाबे ने भाई रमदास एक सिख सी उन्हूं आवाज दे के क्या प्यारिया, गुरु हरगोबिंद साहब नूं संदेश दे दई, बुढ़ा तेनूं याद प्या करदा। संदेश मिलिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े ते चढ़ के रमदास पहुंचे ते कहिंदे ने इतिहासकार, बाबा बुढ़ा जी तख्त ते बैठे ने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जाके बाबे बुढ़े दे घुट के चरण पकड़ लए। बाबा बुढ़ा जी उठ खलोते, कहन लगे सतगुरु बख्श दी इस बुढ़े नूं, शाम दे वक्त जेड़ियां गल्लां होईयां ने विद्वाना ने सांभ के रखियां ने। कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहब कोल बह गए, कहन लगे बाबा 113 साल गुरु नानक दे घर रहा है, कोई सुना बातां गुरु नानक दे घर दियां। बाबे बुढ़े ने गुरु नानक दा नां सुन लिया, अखां विच पानी भर लिया। उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बाबे बुढ़े ने अर्ज कीती, कहन लगा सतगुरु मैं खिन खिन भुलिया वां, 113 साल तेरे घर विच चाकर रहा वां, इस बुढ़े ने पता नहीं किन्निया कु भुल्लां कीतियां होणगियां, अज जान लग्या सिर्फ इन्ना कु कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता। प्यारियो चेते रखियो, जिन्ना कृपा लई ओ अंतले दिन तक भी मेहर मंगदे ने। अज सतगुरु इन्नी गल तुरदियां कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता, ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने नीर भर के क्या कहन लगे, बाबा मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास ना परिया रे, जिन्ना सुनिया जिन्ना वेख्या ओ बख्शे गए, तेनू ता कई बारी गुरु नानक ने गलवकड़ी विच लिया, तू क्यों नहीं बख्शिया गया। बाबा बुढ़ा जी ने अमृत वेले इशनान कीता, गुरु हरगोबिंद साहब नू कोल बिठाया, कहन लगे दाता जी मैं जपजी साहब का पाठ करांगा, तुसी सुनियो। बाबे ने सुरीली आवाज विच पाठ शुरू किया, अज ओ कुतबी सितारा अपने पुत्र नू कोल बुलाया भाई भाने नू, ते गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणा विच मत्था टिका के कहन लगा दाता ए तेरे ही जिवें मैनू गरीब नू नवाजिया, मेरी अंश नू सिखी दी दात दई, अपने सिख बंदी जाय दसी। सतगुरु ने कहा बाबा केवल तू नहीं, तेरिया रहिंदियां पुश्तां विच भी सिखी दी दात चलेगी। अमृत वेले इशनान कीता, बाबा जी ने जपजी साहब दा पाठ शुरू कर दिता, गुरु हरगोबिंद साहब सुनी गए, बाबा पौड़ी पौड़ी चढ़दा गया, जपजी साहब की पौड़ियां की लंघिया वह सचखंड दी पौड़ियां नूं जांदा पिया, जदों पहुंच गया सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखा नजर निहाल, फिर कमाई ते आ गया जत पहारा धीरे सुनियार, पढ़ ली अंतली पौड़ी, ते जदों शब्द आया जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, मत्था टेकिया ते परत के मत्था उठिया नहीं, बाबा बुढ़ा सदा लई गुरु नानक दे चरणा में चला गया। जपजी साहब की समाप्ति होई, बाबा बुढ़ा जी दे तन नूं चुकिया मंजे ते पाया, चेहरा उस तरह भखदा पिया। पहला समा सी विद्वान सज्जन लिखदा, पहला समय बाबे बुढ़े नूं इशनान कराण लगे, एकाग्रता बख्शिया जे थोड़ी जी टिक जाया जे, बाबे बुढ़े नूं इशनान कराउंदा पिया मेरा गुरु हरगोबिंद साहब। जदों सतगुरु ने इशनान करा दिता ते बाबा जी दी अर्थी नूं चुकन लगे ना, अगे लगा बाबा बुढ़ा जी दा पुत्र भाई भाना, नाल लगा बाबा बुढ़ा जी दी अर्थी दे भाई गुरदास, पिछे लगा भाई विधि चंद, ते नाल लगा भाई जेठा, चार जणिया ने चुकी, ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब जदों अर्थी चुकी देखी ते अपना आप अर्थी दे थले भेट कर दिता, भाई जेठे नूं पासे करके कहिंदे ने जेठिया बाबे ने जींदे जी तो पालकी नूं मोढ़ा नहीं लान दिता, हुण घटो घट जान लग्या तां बाबे दी सेवा कर लैंदे। बाबा बुढ़ा जी दी अर्थी नूं मोढ़ा ला के गुरु हरगोबिंद साहब गए, कहन लगे चंदन दी चिखा चुनी, ते जदों बाबा बुढ़ा जी दी देह उत्ते रखी, अंतले दर्शन कीते, कपड़ा चुकिया, सतगुरु दियां अखां विच कदी इस तरह विछोड़े दा नीर नहीं सी देखिया, ते जदों बाबा बुढ़ा पिया चिखा दे उत्ते एक एक सीर सामने आ गया,
ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੋ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨੈਣ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਨੀਰ ਹਸਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ

जाल पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह सत्तरिया बत्तरिया गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला

गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे।

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता ले रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइय भाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के शिक्षा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणिया बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हे गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्हां ने प्याला भर के नशे दा पेश कीता है, शराब दा पेश कीता है। ते बाबा जी पुछदे ने इह की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक इहदा नशा उतरदा नहीं। ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो इह तैयार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चों गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता है। उहदे विच नाली लाईए ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता है। ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया है ते थल्लो अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया है इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब दा नशा नहीं, उह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा उहदा सरूर उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है। ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुड़ बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया ना पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुआईया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चुआईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भई ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जिहे बंदे नूं तां रब दी दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नूं मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नूं पर भगत रविदास कहण लगे जेकर गंगा दीआं लहरां दे पाणी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बाणी रे कि जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दीआं लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ लहर सुरसरी सललकृत बाणी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नूं ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुक्कां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नूं आपां भी अपने घर का कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नूं पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नूं पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਏ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ, ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਪਾਣੀ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਣ ਆਇਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਤੇਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਏ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 37 ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ 13 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਦਣ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਪਾਇਆ ਉਦਣ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਲੂਸ, असी भावे नगर कीर्तन कहने जलूस अखर माड़ा नहीं, बादशाह का पूरा शानो शौकत नाल बाहर निकलना इनू जलो तो जलूस बनिया, पर अज असी अखर वर दिता जिस बंदे की बदनामी होवे कहने कर दिता एदा जलूस। एक अखर है बकना, आम तौर पर असी बकना अखर बकवास नू कहने, पर गुरु ग्रंथ साहब कहने बकना अखर भी माड़ा नहीं। कोई जन हर्षो देगा जोर चरण गहू, अगला अखर है बको शुभ रसना, कहने मैं अपनी जुबान तो बोला की बोला जिन्हें मेनु रब ने जोड़िया मैं ओदे चरण घुट के पकड़ा। चरण गहू बकू शुभ रसना दीजे प्राण अकोर, अकोर दर ते भेटा मैं अपने प्राण भी ओदे चरणा विच भेट कर दे। खैर जेड़ी मैं बेनती कर रहा, भाई गुरदास कहिंदे ने जिदन जमया से उदन माया ने प्रभाव पाया, विचों गर्दा निकल आया खत्म विसार दुनी चित लाया। जिदन जन्म होया भलिया कोई करोड़ा विचों विरले जेदी लिव जुड़दी आ, नहीं तां लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ते भाई गुरदास जी ने बड़े कमाल दे बचन कहे, कहिंदे ने जिदन जमया सें उदन साई विसरिया, पर जिदन व्याह होया उदन मां प्यो नूं विसार दित्ती। पर सारिया ते गल नहीं टुकदी, जेड़े केवल मां बाप दी सारा जीवन तां बेइज्जती करदे रहे ते मरण तो बाद पानी लै लै के ते रोटियां लै लै भाइयां ते पंडतां दे पिछे तुरदा रहे, उहनां नूं भाई गुरदास कहिंदे पए। कहिंदे ने कामण कामणे आरिए कीतो कामण कंत प्यारे, नी तूणे हारिए इस्त्रिए तू कामण ने इस्त्री ने पति ते तूणा क्यों जा कर दिता। जमे साई विसरिया जिदन जन्म होया सी उदन रब नूं भुला दिता, विवाया मां प्यो सारे जिदन शादी होई।
1: सतना है जिनके बाहर चलना है, तो सतगुरु गुरु का गोचर अमृत लोही सारे प्रभाव मुकदम है। आप जी के कारण से हम गुरु कर रहे हैं वो सभी बहने हैं, इसलिए सारी संतन बेनती है अपना मान बढ़ा के सभी तरह मानस सदगुरु पर भी प्रकाश कर दिए सुखी प्राप्त करो, अपने जीवन सफल बनाए बहुत सारे प्रोग्राम बाल कार्य को श्री शंकर सहवान में जारी चल रही है, जिस करके संख्या हम काफी जरूरी है, संख्या ठीक मेरी चलती है, सारी संख्या बड़े ख्याल है गुरु का रूपये हम सुबह सेवा भी दिशा पा रहे हैं, इसलिए सारी संख्या का तो धन्यवाद है। रहते दो बजे सभी कथा अरे अपने जीवन में दूर करना जोड़ो और हमारा करना जरूरी है, दो ही घंटे वास्ते अवसर के आम जी कथा के नाम जोड़ेंगे, साढ़े अठ बजे तक आप जो कथा ना जोड़ते आम जी की कथा होता है।

हर एक जो वस्तु इस संसार विच पैदा कीती है उसनू किसे मर्यादा किसे नेम किसे दायरे दे अंदर अपने हुक्म दे विच टिकाया होया है ते जदो उस परमेश्वर दी बनी हुई ए दात मर्यादा भी चले ते जीवन नू सुख दिंदी है ते जदो आप खुदरापन करे ते उदो मनुख दे जीवन ले भी दुखदाई बन जांदी है। जिमें उदाहरण दे तौर ते जे ता अग चुल्हे विच बलदी होवे ते चुल्हे विच बलदी हुई अग मनुख दे पेट दी भुख नू दूर करदी है। देखो ओ किसे मर्यादा दे अंदर किसे नियम दे अधीन किसे दायरे दे अधीन आउंदी है ता उस दा बलना मर्यादा विच मनुख दे जीवन नू सुख देंदा है ते ओही अग किते बेमर्यादा हो के चल पवे ते घर नू साड़ के राख भी कर सकदी है। ओही पानी है जिस दे पीन दे नाल मनुख नू जिंदगी मिलदी है। जेकर ओ पानी किसे मर्यादा दे अधीन आवे ता मनुख दे तन नू शुद्धि देंदा है एदे अंदर दी प्यास बुझांदा है ते एही पानी जदो खर दा रूप धारण करके बेतरतीबा बेमर्यादा खुला हो के चलदा है ते कई वारी शहरां दे शहर रोड़ के अपने नाल लै जांदा है। मेरे कहण तो मुराद के हर धरती विच मर्यादा विच चलण वाली वस्तु जिंदगी लई सुखदाई है ते बेमर्यादा बेतरतीबी होई कोई भी चीज जो है वह जिंदगी लई दुखदाई बन जांदी। आओ कल आपां विचार कीती सी कि हर चीज बाहर दी किसे रहत किसे मर्यादा दे अधीन है। अज सतगुरु जी दी बख्शी हुई अंतरीव रहत गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते आधारित ते और जो सानू बाहरों कृपा करके रहत दी दात दिती है इस संबंधी गुरु कृपा दे नाल आपां विचार करांगे। आप समूह माई भाई गुरसिख संगत दे चरणां विच बेनती है कि एकाग्रता दी दात बख्शनी और सारे रल के अरदास करिए। हे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी आप कृपा करो साडे अंदर नूं टिका एकाग्रता ते अंदर दे फुरने शांत कर नरोल अपने गुरु शब्द दी विचार करन दी और सुन दी दात बख्शो। करो कृपा साध संगत जी विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे विच जदों भी जगयासु ने सतगुरु दे चरणां विच बेनती करके प्रभु दे घर दा वाहिगुरु जी दे घर दा मार्ग पुछया है ते उस वेले जितने भी शब्द तुसी पढ़ लवो मेरे सतगुरु ने हर एक जगयासु नूं उत्तर केवल एक ही दिता है। जदों असी पढ़ने आ मेरे साहिब दे अमृत बचन ते अपने आप नूं अत दी निम्रता विच लिया के बेनती करदे ने हे सतगुरु के साडे कोल ज्ञान दे चक्षु नहीं साडे कोल ज्ञान दे नेत्र नहीं एक कृपा करके दसो हां कि असी अखां तो हीणे आ ते मैं बेनती करा इन्हां दो अखां दी गल नहीं साडे कोल अंदर ज्ञान दे दीदे नहीं ते मालक जी जे सतगुरु दा लड़ पकड़ना होवे सानू कोई मार्ग दसो कि असी गुरु दा लड़ पकड़ सकीए कोई तरीका कोई जुगत ते मेरे दाता जी ने उत्थे बहुत कमाल दा उत्तर दिता है। असी ये बचन पढ़ने खम अंधले अंध बिखे बिखराते क्योंकि गल गुरु दा हुक्म मनन तो शुरू

उस दिन भावना वालियां दे खिरदे विचों आवाज निकली, गुरु गोबिंद सिंह बच्चे पनीरी ने ए ना रहे ते पंथ दे निशान कौन चुलाएगा। उस दिन साडी अरदास विच तुक शामिल कीती गई कि जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहे, जिथे जिथे तेरा खालसा होवे तुसी कृपा करियो कि इन्हां दी रखिया करियो। मैं जिहड़ी बेनती करना पिया असी शब्द नाल जुड़ के कदी देखिए गुरु सज्जन कैसा है। गुरु नानक प्रकाश विच कवि संतोख सिंह ने ते गुरु नानक चमत्कार विच भाई साहिब भाई वीर सिंह जी ने एक बहुत सोहनी उदाहरण दिती। तुसी भावना नाल बैठे हो, देखो कहिंदे ने गुरु नूं सज्जन बना, शब्द नाल जुड़ी है गुरु दा सीना कह। ओह तां कहिंदे ने जिहदे वल गुरु नानक साहिब उंगल करदे ना करम तां ओहदे वी निबड़ जांदे। मैं अगे चल के फिर इहदा विस्तार करना। उन्होंने बड़ी सोहनी घटना दिती है कि गुरु नानक साहब एक नगर विच गए ने, सिर्फ साखी तां आधार बनाई कह गुरु सज्जन कह त्रुट पवे ते गुरु सज्जन हर थां ते सहायता कर दे। हजूर नगर विच गए ने, पिंड सारे दा सारा नगर जिहड़ा है वह लुटेरिया दा है, जिहड़े जिन्हां दा कम किता एवे आए कोई बंदे नूं लुटना ते लुटन तो पहला ओहदा कतल कर देना। गुरु नानक साहब कृपालू गए ते चेहरे दे उत्ते नूर डलका मारदा सी, हजूर दे दर्शन कीते ते इंज प्रतीत होया कोई हीरियां दा वपारी आया, कोई कीमती मोतियां दा जोरी कह, एदे मत्थे दा नूर दसदा एदे कोल बहुत खजाना होवेगा। तन गुरु नानक साहब जी नूं एक सज्जन उन्हां विचों अपने घर लै गया, बिरती अंदर मलीन सी, नाल दिया ने कहा देखी वपारी बहुत वड्डा ही, एवें ना किते जान दी जो कुछ एदे कोलो मिलिया इमानदारी नाल सारे पिंड विच सवेरे वंडी। रात इन्हे हजूर कृपालू जी नूं आराम कर ली कहा, पहला कहा भोजन छकोगे? गुरु साहब कहिंदे ने बस एक वारी छक लिया ओहदा ही आधार बना के चले। पुछिया केड़ा भोजन? कहिंदे ने नाम दा भोजन छकिया उस नूं आधार बनाया। कहन लगे विश्राम करोगे? कहिंदे ने तन दे विश्राम दी बात नहीं, मन हमेशा विश्राम विच ही रहिंदा है। कहन लगे आप टिकोगे? हजूर ने कहा टिका दसन दी लोड़ नहीं, अंदर चंचल मल नूं गुरु दे शब्द ने टिका दिता है। ओह कुछ बोलन गुरु साहब अंदर दे उतर दे। उन्हां दे मन विच आया कि बेपरवाह वपारी है, रात नूं सौवेगा ते सवेरे असी जदों सौ जाएगा प्रभात वेले इहदा कतल करके सब कुछ खो लांगे। ओह रात नूं पै गए हजूर चौंकड़ा मार के बैठे रहे, सूरज दी टिक्की नाल ओ कातल ओ ठग उठे, बाबा जी भिन्नी रैनड़ीए अपने मार्ग ते चल पए सन। पिंड दे लोग आए आ के कहन लगे लिया साडा जो हिस्सा रात जो वपारी आया तुसी लुटिया तुसी ठगिया साडा हिस्सा दिओ। उन्हें कहा नहीं दुखाई रब दी मैं की लुटना सी, मेनू तां नींद ने ठग लिया मेरे सुतियों किते चले गए। भाई वीर सिंह उन्हां ने इथे बड़े भावपूर्त बचन कहे ने, सिर्फ एक शरदा बनान ली मना देख दुनिया विच बड़े सज्जन मिलनगे, जे सतगुरु नूं सज्जन बना लें ते सतगुरु सज्जन रब दी दरगाह विच वी तेरे सामने खलोता। भाई साहिब भाई वीर सिंह लिखदे ने सवेरे ओ लोक इकट्ठे होए, नौजवानां ने तेज धार शस्त्र लै जंगल विच जा बाबे गुरु नानक साहिब नूं घेरिया। कहन लगे रुको हजूर रुके, ते शब्द सन कि तुसी सानू धोखा दिता। हस के कहन लगे जिन्हां दे सवास धोखा पै देंदे ने उन्हां नूं किसे दूजे ने धोखा की दे जाना है, तुहाडी तां जिंदगी तुहानू धोखा पी देंदी है। कहन लगे असी तुहानू ठगना सी, साडा किता है जो साडे सामने साडे पिंड विच काबू आ जाए असी कई पुश्तां तो ठगने आ। सतगुरु हस के कहन लगे ठग दी पए हो पर मन तो रजे नहीं ना। कहन लगे गल ना कर असी तैनू भी ठगना कह। मुस्कुरा के कहो ने के ठगण दी जरूरत करो, अज तीकरा दुनियादारी ठगे जे किते रब दी कमाई वाले नू ठगण दी जाच आ जाए ते जन्मा जन्मा दी भुख चली जाए। जे लुटना जे तां कबीर जी ने कह कहिंदे लोकां दीआं जेबां लुटण वालिया कदी रब दे घर नू लुट, पर लुटना किवें? गोलक लुटना नहीं, कबीर लूट ना है तो लूट ले राम नाम।

करके गुरु वाले शब्द लिया चाहना कि असी ताड़ी दे रुख की तरह हां अपने खौमे के नशे विच इन्ने गुलतान हैं अपने वकारा के नशे विच इन्ने असी मस्त हाँ कि मेरे मालिक जी अपनी खौमे करके असी किते भी परवाह नहीं ताड़ी का रुख ओदे विचो रस निकलता है वह नशे वाला रुख किते परवाह नहीं पर जदो ताड़ी दे रुख का कागज बना के ओदे उत्ते राम नाम लिखिया जाए ते लोग उसे ताड़ी दे रुख दे कागज नूं मत्थे टेकदे ने असी तां ताड़ी दे रुख दी तरह हां पर जदो सतगुरु तेरा नाम लिखिया जाए ते ताड़ी दा रुख भी जिहड़ा वो कीमती हो जांदा है। भगत रविदास जी ने शब्द वरते ने कह लगे तर पाण अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारक ताड़ी दा रुख अपवित्र मनिया जांदा है। भगत भगौत लिखी है तै उपरै पूजिया कर नमस्कार जदो ओदे ते भगती वाले शब्द लिखे गए ते उसे रुख नू लोकी मथे टेकन लग पैंदे ने दाता तुद बिन अग न मोलो पर कीमत कौन करे तुद भावा जे तेनू पा जाइए ते फिर ताड़ी दे रुख नू भी लोकी नमस्कार कर दे। दूसरा प्रमाण अर्थ करा के कीड़ा कभी तक्यो कोई कीड़ा भी आप शब्द वरतने ते उस कीड़े नू लोग मारन दा यत्न करदे ने। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन कहा कहिंदे ने रेशम दे कीड़े वल कभी झाती मारियो खैर तां ओह भी एक कीड़ा ही ते बाबा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाबा रविदास जी कहिंदे ने कि मालिक जी दूजे कीड़िया नू लोग देखदिया सार मसल देंदे ने असी तां रेशम दे कीड़े दी तरह हां हुण प्रमाण कैसा लिया उन्हां कहन लगे रेशम दा कीड़ा मत मान करे कि मेरे कीड़े होने करके मेरी कदर है कह लगे तेरे वर्गे कई कीड़े बंदे ने मसल दिते रेशम दे कीड़े की कीमत आए क्योंकि एदे को रेशम भरी हुई है। कह लगे मालिक जी आम कीड़े का अद्धी कौड़ी मुल नहीं पर जदो रेशम दे कीड़े नूं कोई पालदा है ते इस करके ओदी कीमत पै जांदी है क्योंकि ओदे कोल कीमती रेशम है। साहिब ने बचन किया कह लगे तुम मुख तूल सफेद सफियल हम बपरे जसकीरा के असी ता मेरे मालक कीड़े दी तरह ना ते तेरा नाम रेशम दी तरह चिट्टा पीला तू रेशम है तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपरे जसकीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मद पर मखीरा। तवज्जो दिया जे ताड़ी दा रुख हां असी पर कीमत ता जे तेरा नाम लिखिया जाए रेशम ते कीड़े दी कीमत ता जे रेशम होवे ते धन गुरु नानक साहिब कहिंदे ने जेड़े तेनू भा गए उन्हां दी कीमत कोई कह नहीं सकदा ते अज आपां उन्हां पंजां नूं जेड़े मेरे सतगुरु नूं भा गए उन्हां गुरु के लालां दा जिक्र करना भावें महापुरुष सानूं इतिहास दे पन्नियां विचों दस के गए मैं बेनती करां कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वालिओ कि गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी दे विच मेरे दातार ने जिस हिरदे विच भी साई प्रगट हो गया ए नहीं देखिया ए चमड़े मरे पशुआं दा काम करदा ए नहीं देखिया ए कपड़े रंगण दा काम करदा ए नहीं देखिया ए कपड़े बुन दा काम करदा है ए नहीं देखिया घर घर दियां बुतियां करन दा काम नाई पुणा करदा है ए नहीं देखिया ए बदना पिछे लाके खल वांदा है मेरे गुरु ने चम नहीं देखिया ओदे काम नूं ताके जां ओदी जात नूं देख के ओनू निंदिया नहीं। सतगुरु ने कहा जे तेनूं प्यास लगी है ए ना देख भांडा मिट्टी दा ए ना देख भांडा कांसी दा ए ना देख भांडा पित्तल दा तेरा संबंध केवल पानी नाल है जे रविदास दे अंदरों निकलदा शब्द तेरी प्यास बुझांदा ते मैनूं ओह वी परवान जे नामदेव दे अंदरों निकलदे बचन तेरे अंदर दी तृप्ति करदे ने ओह वी परवान ने जे सैन दे शब्द तेरे अंदर नू टिका देंदे ने ओह वी परवान ने ते गुरमुखो एक बेनती मैं कर दिया देखो अज भावे साडे विच एक सोची समझी चाल चली जा रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों कुछ ना कुछ गड़बड़ कराओ क्षमा करियो यही कारण अज भगतां नाल शब्द गुरु जोड़े जा रहे ने। मैं किसे तरह तर्क नहीं करदा बाणी दे विचों दलील देनी है जेड़ी गुरु की पदवी है ना देखो गुरु की पदवी नू चैलेंज करना साडे अंदर दी अज्ञानता होगी जे कोई कहे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच तुसी भगतां नू गुरु की तुलता नहीं दिती मैं कहना तुसी सारे बाणी पढ़न वाले बैठे हो कोई गुरु ग्रंथ

बाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिहड़ा देवत आंदा है सिर्फ योगियां लई है त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इया हर्ष है ते योगियां लई भी है भोगियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इया हर्ष है उमा हरि मंदिर इया हरि गुरु मंदिर या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहने अगर मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है कि ए गुरु की नगरी नू चुनना है तो कहिंदा बैकुंठ दे ते सिर्फ हरि दा ही मंदिर है ना इत्थे हरि दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर। या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरि दा मंदिर है इत्थे गुरु दा मंदिर है इत्थे साधु बैठे ने इत्थे ज्ञानी बैठे ने इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहिंदे ने ऐ परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तों कुर्बान करदा इतनी महान है मैं इसकी चोण करदा। तो खिमा करने देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान दे बेशतर मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बने हुए बेशतर मंदिर पखंड ते तरह तरह दे डिंब दे बने हुए ये मंदिर अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल ताली काली नूं तिलक दिओ। मैं तीन दिन लगातार गया पहली दफा जब कलकत्ते गया से मंदिर देखण तीन दिन मैं रोज गया सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद च पता चले इत्थे काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां शिकंजा उन्हां ने इक बनाया होया मूर्ति दे सामने ते शिकंजे च पुन्ने वाले दिन ते संडे नूं कहिंदे ने संडा कढ़दे ने रोज बकरा कढ़दे ते उत्थे ओह खड़े होके जो मंत्र मंत्र पढ़दे सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करदे सन मैं ओह देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढ़दे ने फिर ओह खून दे तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रु आए हुंदे ने दर्शनार्थी उहनां दे मत्थिआं ते लांदे ने अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने फिर उस बकरे का है मांस उसे मंदिर प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता है प्रसाद है प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैनू तीन दिन लगातार देख के ना तो किवें करनी उन्हें सोच लिया किधरे कि बड़े श्रद्धालु ने बड़े भगत ने तीन दिन दे आ रहे काफी देर दे इत्थे बैठे रहेंगे तो मैनू कहन लगे सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है। मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा और कहीं नहीं है मैंने कहीं नहीं देखा बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से यह बूचड़खाना बनाया गया इसको मंदिर कौन कहेगा यहां ना भजन ना बंदगी खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है और क्या है यहां ये हकीकत है। भैरो है उन्हों शराब पिलाओ भैरो दे मंदिर कहने ने ये बर्फी नहीं खांदा कड़ा प्रसाद है तो शराब पींदा पेट करो शराब पुजारियां ने आप शराब पीनी सी भैरो नूं अगे कीता पुजारियां ने आप संडे खाने सन काली नूं अगे कीता हकीकत इतनी पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण दी रास नूं अगे कीता ते पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नूं अगे कीता ते इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर देच ग्रंथी सिंह कहते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करने वाले नो पर किसी वक्त एक दरबार साहब देच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्होंने ग्रंथी सिंह नहीं कहते सन पुजारी कहते सन कुछ समा यह रौरीति रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना है गुरु तेग बहादुर साहब ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियों ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी बड़ी महिमा बड़ी प्रतिष्ठा ते उन्होंने डर पै गया इस मंदिर का मालिक आ गया ते साड़ी केड़ी गल लैनी मालिक नूं बाहर ही रखो आप मालिक बने रहो कड्डो मालिक नूं बाहर

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभा नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना हो जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लग्या उसनु उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन का कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहिंदे

0: क्योंकि बाहरों मैल लगी, पर जे मत नू मैल लग जाए, जे विचारां नू मैल लग जाए, मनुख दे विचार मैले हो जाए, ता विचार ता बाहर नहीं अंदर रहिंदे, बाहरला पानी अंदरली चीज नू तोड़ नहीं सकदा। जे विचारां नू मैल लग जाए ता विचार अंदर रहिंदे ने, ते अंदर विचार ही जा सकते ने, इसलिए जे विचारां नू धोना होवे तां विचारां नाल ही धोता जा सकदा। जे अंदरले विचारां नू मैल लग जाए तां जरूर पाएगी विचारां दी, क्योंकि विचार ही विचार तक पुज सकते ने। हजूर कहिंदे ने जे तेरा मन मैला हो जाए, ते मन मैले दे कारण मत मैली हो जाए, मत मैली दे कारण विचार मैले हो जाएंगे। तेरे लिए जरूरी है तू गुरु दे विचारां दी छो दे, क्योंकि विचार ही विचारां नू पवित्र कर सकते हैं, पर जरूरी है छो दे। तन नू धोने लई भी तो पानी दी छो देनी पैंदी है। जे आखिए पानी दा टब बाथरूम विच पिया रहे ते असी बेडरूम विच पै पै ही साफ हो जाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तन नू धोण लई भी तो पानी दे नेड़े होना पएगा, पानी दी लपेट विच आना पएगा, पानी दी छो लेनी पएगी। पानी दी दूरी नाल तन साफ नहीं हुंदा, बल्कि हजूर ने तो बाणी विच इक थां ते फरमाया, कहंदे ने
1: तिखा तिहाया क्यों लड़े, तिहाया क्यों लगे जा सर पीतर पाल।
0: प्यासे दी प्यास नहीं बुझ सकती जे नदी दे ते प्यासे दे दरम्यान विच कोई दीवार हो, उन्नू पानी दा बुक भर के होठां राही मुंह राही अंदर निकलना पएगा, प्यास तां बुझेगी छो लेनी पएगी। ते जे बाहरले पानी दी तन नू जरूरत है छो लैण दी तां साफ हुंदा है, तां अंदरले विचारां नू भी विचारां दी छो दी लोड़ है। इत्थों तक विचार पहुंचाने ने, विचार दूर पै रहे ने बाणी दे, शब्द की बाणी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु दे पवित्र साफ सुथरे विचार। जे तेरे विचार मैले हो जान तां विचारां नू विचार ही साफ कर सकदे ने, पर एक शर्त ते भी गुरु दे विचार तेरे अंदर जाके तेरे विचारां नू छोड़। ऐसा ना होवे भी तू आखे गुरुद्वारे अखंड पाठ रखा दिया, पैसे भेज दिया, रुपए पहुंच जान, ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे अखंड पाठ कर देवे ते तेरे विचार घर बैठे पवित्र हो जाए।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़े दी वार दे चों अज पावन पवित्र हुक्मनामा आया है। ते ए वार साहिब गुरु रामदास जी महाराज की उच्चारण की हुई है। इस वार नाल जिहड़े श्लोक सम्मिलित ने ओ गुरु अमरदास जी महाराज दे ने ते गुरु अर्जन देव जी दे ने। इत्थों एक गल स्पष्ट हो जाती है कि वार दे सिर्फ पौड़ियां ही सन, वार दी बाणी सिर्फ पौड़ियां दी बाणी है। श्लोक बाद दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जोड़े ने। इस वार दे ते बहुत वड्डा सबूत मिल जाता है। जे कह दईए सारी वार गुरु रामदास जी महाराज दी है, श्लोक भी जैसे ऊपर हैडिंग है बिहागड़े की वार महला चौथा, तो हुण सारी वार गुरु रामदास जी दी नहीं, क्योंकि थल्ले आ जांदा श्लोक महला तीजा, फिर आ जांदा श्लोक महला पंजवां, अगे पंजवें महले दे भी श्लोक ने इस वार दे च। तो गुरु रामदास जी महाराज तो पहले दे ते बाद दी पातशाहियां दे श्लोकां दा होना इस गल दा सबूत है कि वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही है।